0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है। इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
4: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
5: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक।

0: दोस्तों 9:38 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का सर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसे मिला। दोस्तों हमारे स्टूडियो की कॉलिंग लाइन चालू है, आप हमें कॉल करके अगले कार्यक्रम की फरमाइशों को दर्ज करवा सकते हैं।
1: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
4: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
5: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार सत श्री अकाल गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून इन किया है रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों गंगापुर सिटी का फिलहाल तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे थोड़ी ही देर में आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। तो चलिए दोस्तों आपके इंतजार की घड़ी को खत्म करते हैं और लेकर चलते हैं आपको लो फरमाइश कार्यक्रम में।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: सर मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर हम सुनना चाहते हैं एक मीनावाटी सॉन्ग है, चुन्नी में चुन्नी में।
0: मीनावाटी सॉन्ग नहीं सुना सकते सर, केवल फिल्मी गानों के लिए फरमाइश ली जाती है आपने।
1: सर एक गान लगाइए फिर हमारा।
0: बताए
1: बूम पागल है
0: था। हाँ जी
1: बूम पागल है था।
0: बिल्कुल

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: हेलो सर, नमस्ते।
2: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका?
3: अनिल शर्मा।
2: शर्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी से।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: फिर भी पसंद हो तो तेरी मर्जी।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में। कुल किया बहुत बहुत धन्यवाद। कान टूटे बंदे रवे मित्रा की।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
5: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
6: मैं ठंडीराम गुजर बोल रहा हूँ, गांव बदरचा से।
5: ठंडीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
6: सर गाने के बोल हैं वो जाने मन मुझे रब की कसम।
5: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना रेडियो जी।

0: नाम बताए सर?
1: गुलशन।
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताए मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस पे?
1: मेरा कहना झांझर छोड़ी खनखन करती है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश करते हैं।

0: हेलो नमस्कार सर।
1: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: रसूल खान बोल रहा हूँ साहब, सेवा से।
1: सेवा शारुली से। रसूल खान जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते रेडियो डीएस से।
0: ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर
1: सुना रहे सर आपकी फरमाइश का बात।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
5: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
6: हेलो
7: जी, नाम बताएं आपका?
6: दिव्या भूजा।
7: दिव्या जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
6: गंगापुर से।
7: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
6: कभी खुशी कभी गम।
7: सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: सौरभ कुमार मीना।
0: सौरभ कुमार मीना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: नसिया कॉलोनी रनापुर सिटी डी एस हॉस्टल से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं सिद्धू मूसेवाला का सो आई।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।
2: सिद्धू मूसेवाला।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: सुनहरी सपेरा।
0: सुनहरी सपेरा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बावनवास से।
0: बावनवास से। बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: मेरा रिश्ता पक्का कर दी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में। कुल किया बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते सर।
1: सर नमस्कार, नाम बताएं आपका।
0: नाम तो सर चौधरी, अर्ज कर रहा हूँ महावीर जी से।
1: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस आज?
0: गाना तो सर पिक्चर का नाम है पति पत्नी और वो।
1: गाना बताएं सर।
0: गाना है लड़की साइकिल वाली।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का।

0: जी नाम बताएं आपका?
1: कुलदीप मीना।
0: कुलदीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: कुंदापुर से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
1: इश्क बावला।
0: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नाम बताएं सर।
1: ध्रुव।
0: ध्रुव जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: एक कटोला जेल के अंदर।
0: एक कटोला जेल के बाहर सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश करता हूँ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर।
3: हेलो,
4: नाम बताएं सर आपका।
3: नरेश।
4: नरेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी से।
4: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: सुमित गोस्वामी का चला दो, गोरी भर तार तेरा ले आया।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से गाना। हेलो

0: आपको।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: राम उतार।
0: राम उतार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: चाहिए क्या? मैं
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं। हेलो
1: ज्योति। हेलो
0: मैम, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोले, नाम बताएं आपका।
1: ज्योति मीना नसिया कॉलोनी।
0: ज्योति मीना जी, नसिया कॉलोनी से। बताएं मीना जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? गाना सुनना चाहते हैं मैम,
1: इश्क दी फनियाद।
0: इश्क दी।

0: जान के पीछे पड़े। अनिल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कब्जे।
0: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पर कब्जे सॉन्ग।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ढूंढ कर 89.6 रेडियस गंगापुर सिटी का तड़का में आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियस पर।

0: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज।
0: ओ बाबू हमने तो प्यार किया है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन गाना रेडियो डीएस में पुल किया।

0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: रफीक खान लोग मस्जिद के पीछे से।
0: रफीक जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
1: आज तुझको पुकार मेरे गीत रे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताए सर।
1: नाम ओम प्रकाश, गंगापुर सिटी से।
0: गाना बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आया सामान घूम के
0: सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताए सर। नाम बताए सर।
2: कल्पना चावला।
0: कल्पना चावला जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: दिल्ली से।
0: कल्पना जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: सॉलिड बॉडी।
0: सॉलिड बॉडी
2: हाँ
0: सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नाम बताएं सर।
1: नमस्ते,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: चंद्रपुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज की रात नगर पर देखी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: दिलीप सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए।
0: बिल्कुल सुनाता हूँ, तो आपकी फरमाइश करेगा ना रेडियो डीएस में कुछ।

0: चाहिए।
1: नहीं सर आपकी फरमाइश का इस्तेमाल रेडियो डेज में कौन। हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताए सर।
2: दिलीप से।
3: धन्यवाद।
1: हेलो हेलो
3: हेलो
1: सर नमस्कार।
3: अभी आइए होंगे जानवर देने पर आज छत्तीसगढ़ से।
1: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
3: गाना आप सोल्जर मूवी से सुनवा देंगे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का। रेडियो डेज में खुल के धन्यवाद।
3: धन्यवाद।

0: नाम बताएं सर।
1: चंद्र प्रकाश।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं चंद्र प्रकाश जी?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: यारा तेरी मेरी यारी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: नमस्ते सर जी।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी।
1: हाँ केशव जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज रेडियो?
0: जी आज ना ये आदमी सड़क फिल्म का गाना है, आज मेरे यार की शादी है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।
0: साथ में दो तीन साथी साथी हैं जी, ड्यूटी से हैं विजय पांडे सिंह और राजस्थान से हैं फूल वर्मा जी और मेरे भाई हैं सत्ताईस शर्मा।
1: बिल्कुल आप सभी की फरमाइश पर सुना रहे हैं बेहतरीन सा गाना रेडियो।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: सर पंकज सोनी।
0: पंकज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर दो नंबरी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: कोमल।
1: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: मेरा वाला सरदार।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का ये गाना।

हाँ जी सत श्री अकाल जी, मैं ताडा अपना जुगराज संधू। उम्मीद करदा तुसीं मेरे वाला सरदार गाने नूं बहुत ज़्यादा पसंद करोगे ते मेरे अगले सोंग्स नूं सुनने लई ग्रैंड स्टूडियो दे ऑफिशियल चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्यो। सत श्री अकाल जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आयुष मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: नजर आके तीर चला गई।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
0: विनोद कुमार शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: जयपुर प्रताप नगर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: तू मेरी शायरी, मैं तेरे शायर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:54 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो।

0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गोल्डन है
0: ग्यारह हजार। कौन सा सर? ग्यारह हजार। घर आ जा
1: रंजन।
0: रंजन।

0: हेलो।
1: हाँ जी बेटा जी, अपने रेडियो स्टेशन पलकपुर राजस्थान जी।
0: हाँ जी सर, सर सत श्रीकाल।
1: सत श्री अकाल बेटा, पलक बेटा, सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल। और भाई थोड़ी सेहत ठीक ठाक है भाई?
0: हाँ जी सर, सब ठीक है।
1: ते अपने मीना सर जी ठीक ठाक भाई? सत श्री अकाल बुला दे मेरी बड़े सर जी नु।
0: हाँ सर ठीक है।
1: चंगा भाई, जाऊँ दे रहो भाई, बात दे रहो। आज लाइव प्रोग्राम अपना है ना भाई?
0: नहीं सर, लाइव नहीं है आज सर,
1: अच्छा
0: कुछ काम है बाहर जा।
1: हाँ, मैंने दस बाबा भुल गया, तू दस्या सी मैनू। हाँ चलो
0: हाँ
1: भाई।
0: जी सर, नाम
1: ते
0: क्या है आपका?
1: हाँ भाई, मैं पिंड मौड़कोट डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो जीत मट्टू बोलता बेटा जी।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गीत बेटा फिल्म है नहीं, है जी ओ है जी मोम की गुड़िया बेटा, फिल्म का नाम है।
0: हाँ जी सर, गाने के बोल।
1: हाँ जी, ओ गीत भाई आनंद बख्शी ने लिखा, ते गाय भी आनंद बख्शी साहब ते भैन लता जी ने।
0: हाँ
1: ओ हैगा
0: जी,
1: गीत जी, बागों में बहार आई, ये गीत है बेटा।
0: गाने के बोले, बागों में बहार आई।
1: हाँ जी बेटा, हाँ जी हाँ जी, बागों में बहार आई, होठों पे मुस्कान आई, आ जा।
0: सुनाते हैं आपकी फरमाइश,
1: ठीक
0: तो रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: है बेटा, सत श्री अकाल बेटा, बाबा नाम सत श्री अकाल।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, अभी कॉल करा है ना, थोड़ी देर पहले आपको।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम कोमल शर्मा है, गंगापुर
0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन
1: सिटी से।
0: सी जगह घूमना चाहोगे?
1: मैंने पायल छनकाई।
0: ओके, मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: निकिता।
1: कौन से बात कर रहे हो?
0: रेलवे स्टेशन।
1: कौन सी गाना सुनना चाहोगी?
0: जो लफ्जों में लिखती मैंने अपने पेन
1: से। मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: यह शर्मा, सैनिक
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नगर, गंगापुर सिटी, जादूगरनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे,
0: गंगापुर सिटी के हर।
4: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
6: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
7: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
6: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियाँ जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
8: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते
0: जी। बहन प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मैं राजू यादव, ग्राम उत्तरहिका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: बहना जी, कल हम गीत नहीं सुन पाए, वो वाला गीत सुनेंगे, क्लर्क मूवी का है, आज 15 अगस्त है, झूमो रे झूमो, आज 15 अगस्त है, क्लर्क मूवी का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना, रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहन प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:25 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद 1 बजे नहीं तराने कार्यक्रमों के साथ। सुनते रहिए आपके मन पसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी, जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी।
1: एक सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
0: ओ होर होणगे जिन्हां नूं तू पैरां विच रखदा है, मैं प्यार हां तेरा।

बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.
4: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त चुका है एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ढूंढ कर 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:04 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में बातें करते हैं बदलते मौसम में, बरसात के मौसम में हमें किन किन सावधानियां रखनी चाहिए। बरसात के मौसम में हमें पीने का पानी को साफ रखें, पानी उबाल कर या सुरक्षित फिल्टर या पानी पिए, भार का खाना न खाए। जैसे बारिश के मौसम में दूषित भोजन से पेट में संबंधित समस्याएं हो जाती है, हाथ वे मुंह धोकर खाना खाए। खाना खाने से पहले बाहर से आने वाले बाद हाथ और मुंह को धोकर साबुन से खाना खाए। गीले कपड़े को तुरंत बदले, गीले कपड़ों से हमें कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। हमारी त्वचा पर गीले कपड़े से एलर्जी होने लग जाती है। पैरों पर ध्यान रखें, बरसात के मौसम में गंदे पानी से हमारे पैरों में दाद व खुजलियों की परेशानी होने लग जाती है। उंगलियों के बीच में गंदे पानी से हमारे पैरों की उंगलियों में कुछ फिंगर्स नाम का एक रोग हो जाता है, उससे हमारे उंगलियों सूज जाती है और कटे कटे से खून निकलने लगने लग जाता है। बरसात के मौसम में हमें अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में घर के आसपास पानी जमा होने से घर के आगे मच्छर होने लग जाते हैं, जो हमारे घर के बीमारी का खतरा है। बरसात के मौसम में बिजली से सावधान रहे, गीले हाथ स्विच या बिजली के उपकरणों को ना छुए, बारिश में टूटे हुए तारों से भी दूर रहे, बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट रखे और मौसम खराब हो जाने पर अपनी यात्राओं के साथ कहीं पर भी जाए तो अपना ये सामान जरूर ले जाएं। सड़क पर सावधानी रखें, बारिश में अचानक कहीं कहीं जगह फिसलने की वो दिक्कत होती है, तो हमें ढंग से या अच्छी तरह धीरे धीरे चलना चाहिए। किसी भी वाहन को भी सड़कों पर या कहीं लंबी रास्ते पर भी धीरे धीरे चलाना चाहिए। घर में हवा और रोशनदान रखें, ज़्यादा नमी से दूर घर में रोशनदान यानी अपनी खिड़कियों को खोल देना चाहिए। पशुओं को भी ध्यान रखें, उन्हें साफ व सूखा जगह पर रखें, गला व सड़ा हुआ चारा ना दे। सर्दियों के मौसम में हमें अपने पशु पक्षियों को अच्छी तरह रखना चाहिए। धन्यवाद।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6।

दौलत भी शौहरत भी अज सब कुछ कोल मेरे अखां सामे तू नहीं है हो दिल विच हौल मेरे अज 14 साल बाद मुड़िया हाँ उन्हां रावां ते देख के उही हवावां क्यों अज वधियां सावां ने काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे तू गीत मेरे दा कला कला लफ्ज हो जावे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है, 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सांस सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: तो सुबह तो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: चाय साहब।
1: हेलो मम्मा, कित्थे हो?
2: बेटा मैं ड्यूटी ते।
1: मम्मा तुसी कोई दो मंडे रेस्ट कीते आ?
2: हां जी बेटा, क्यों?
1: प्लीज मम्मा उन्हां नूं छड़ दो ना।
2: बेटा जी मैनू अपनी ड्यूटी करन दियो।
0: और किसी को चाहिए चाय?
2: हरपाल सिंह, मैनू सारियां फाइल्स रेडी चाहिदियां ने। नवे एसएसपी साहब किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके
3: जी।

सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। हर बीच में है।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:16 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर के कारम।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस।
5: मोहब्बत की तो जबान ही उर्दू है, तेरी तो मुराद भी नहीं पूरी होनी।
6: मुराद तो पूरी होगी,

पहला सोचता सी पर अज थानू पहली ही बार मिल के यकीन हो गया कि मेरे चंगे कर्म जाग गए जो परमात्मा ने मैनू

0: कई रिश्ते ना वाहिगुरु आप बना के भेजता, तो शायद उन्हां विच्चों एक रिश्ता अपने दोवां दा सी।
1: हाँ पता है, नेड़े तेड़े भी नहीं, मैं थोड़ा तो उर्दू सीखना आना है, तुसी मेरे तो पंजाबी।
2: तेनूं ना साडा दिल लवाउणा आउंदा, आप दे आप नूं खिलौना बना के सानूं जवाक बना देना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:03 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

दोस्तों 4:18 का समय हो चुका है। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर सकते हो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6।
2: और दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम राजस्थानी, और अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: नमस्कार
4: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
3: साजन बोल रहा हूँ गंगापुर से।
4: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: कुछ तुम्हें और भी आता है सताने के सिवा।
4: कुछ तुम्हें और भी आता है सताने के सिवा।
3: हाँ, कुछ तुम्हें और भी आता है सताने के सिवा।
4: छुपाने के सिवा या सताने के सिवा? सर मुझे थोड़ा पीछे
3: सताने के सिवा।
4: सताने के सिवा।

0: हेलो आदरणीय दीदी, सादर नमस्कार।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं? मौसम कैसा है?
1: सर मैं ठीक हूँ और मौसम भी ऐसा ही हो रहा, थोड़ा बारिश का।
0: जी जी बारिश भी हो रही है, हल्के हल्के बादल हैं और उमस वाली गर्मी भी हो रही है।
1: हाँ सर हो रही है।
0: गाना है मारे ही बड़ा में नाचे मोर, हम साथ साथ हैं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके थैंक यू, टेक केयर, हैव नाइस, बाय।
2: हाय कितना खूबसूरत है।
3: वाकई कितना खूबसूरत है।

0: कैसी हो?
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी मैम, क्या आपका?
2: माहिनूर
1: कहाँ से बात कर रही हूँ?
2: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: बरहने वाली महलों की।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: नाम क्या है आपका?
1: आरबी गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो आरबी जी? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेहंदी है रखने वाली।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त

0: का सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
7: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
8: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूं तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर।
9: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
10: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
9: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लूखेड़ा से।
10: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
9: नजरबाज सैया नजरिया न मारो।
10: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
9: धन्यवाद मेरी बहन।
10: यू वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम राहुल राणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सनम तेरी कसम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6

तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, मरते दम तक रहेगा सिर्फ आज नहीं।

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

राहें मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।